गई माँ बिका माईले झुझुकिरा कहाँ मैले बिराए भानी कि मेरा दुई बाहु माता ढोकी दे जन्म बापला तेरो अनी तो करना दुई तो धन को भतुआ।

0: सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम बैनेको थप्लो सात मेगाहर्जबाट म बद्री प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल आषाढ शुक्ल पक्ष सन् 2026 जुलाई 28 तारीख श्रावण 12 गते मंगलबार चतुर्दशी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी आओ साक्षेण कल्पय भरी।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: नमस्कार, मेरो बैकेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने म झटक प्रसाद तिमल सिन्हा। म दुख केही दुई चारवटा भजन यसो गाउँ भनेर आएको यहाँसम्म। नमस्कार हजुर। जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पिता महादेव, हरि हरि सदैव हरि भक्ति गरौं है, हरि हरि सदैव हरि भक्ति गरौं है, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारौं है, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती गरौं प्रभु आती मा तुमारे, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारे, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारे, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पितै महादेव, हरि हरि सदैव हरि भक्ति गरौं है, हरि हरि हरि हरि सदैव हरि भक्ति गरौं है, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन छोडेर नजाऊ हो रुन्छन मेरो मन, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन

राम गई बनमानी पछी मारे हरिनी हे मको सीताजी हरियो जटायु उतरी गो सुग्रीव सँग भेट भयो बाली मरन गयो लङ्कापुरी खाग भयो रावण कुम्भकर्ण मरन गयो श्री रामायण यति हो नारायण।